0: तुम जो मिले हो. इस टाइटल ऑफ द सॉन्ग इज बाय विशाल मिश्रा. इट्स लंच ब्रेक लोटस एफएम. मोर आफ्टर दिस.
1: जोहान्सबर्ग, द रिकॉर्ड ब्रेकिंग शो, अ म्यूजिकल फ्यूजन विद बेरू एंड बाला, इज नाउ हेडिंग फॉर गोल्ड रीफ सिटीज लिरिक थिएटर ऑन सैटरडे 20th June. कैच द किंग्स ऑफ सिट डाउन कॉमेडी एंड डर्बन्स लीडिंग ऑर्केस्ट्रा, द बॉलीवुड शो बैंड, फॉर एन इवनिंग ऑफ फुट टैपिंग म्यूजिक एंड साइड स्प्लिटिंग कॉमेडी. टिकट्स फ्रॉम 150 rand, सेलिंग फ्रॉम टिकट प्रो. A musical fusion with Beru and Bala. Gold Reef City, 20th June.
2: A new, faster, smarter way to play the lotto is coming. Sizekaya.

0: अरे भाई ये क्या हो रहा है?
1: अरे ढोलक बज रहा भाई, ढोलक
0: ढोला क्यों बज रहा है?
1: अरे शादी है यार, शादी
0: शादी हम भी चलेगा।
1: चलो चलो चलो, हाँ चलेगा।

0: मटन, अरे मथुरा के पेड़े, रेवड़ी मेरठ वाली चाट तरी बांकी लाएगा। अरे मैं हुक्म करूँ तो दूर अरब से पूरा बाग खजूर लाद के आंगन में भरपूर तू मेरे लगवाएगा।
1: अरे लगवाओ।

आप क्यों नहीं छोड़ देते? इतने भी खुफिया नहीं है आप। पहले दिन से आप जो इत्र लगाते हैं ना, उसकी खुशबू पहचानते हैं हम।